0: सेवा।
1: हे भाई, पार ब्रह्म गुरुदेव परमात्मा ने अपने बच्चियां नू आप रखिया है, क्योंकि उदे अगे अरदास कीती है, रखिया करो गुसाई मेरे, राख राख मेरे बीठला। प्रभु नू जदों पुकारिया, प्रभु अगे अरदास कीती ते परमात्मा ने साडी रखिया एवें कीती जिवें माता पिता बच्चियां दी रखिया करदे ने। अपने बालक अपने बच्चियां नू सदा वो बचाउंदे हन। जदों बिलावल राग विच असीं भगत कबीर जी दे बचन पढ़दे हां, उन्हां ने जोदड़ी कीती, प्रभु जी तुहाडे तों बिना जे असीं अनेक प्रकार दे जतन कर लईए, भव सागर तों असीं पार नहीं हो सकदे, विखे विकारां तों साडा बचा नहीं हो सकदा, इत्थे तक कि असीं घर छड के जंगलां विच वी चले जाइए, भोजन दा त्याग करके कंध मूल दरख्तां दे पत्ते ते जड़ां खा के गुजारा करिए, उत्थे भी जाके ये विकारी मन जेड़ा है, पापी मन जेड़ा है, वो उत्थे जाके भी बुराइयां नूं छड़दा नहीं, फिर साडा उधार किवें होवे, सानू कृपा कर आप अपना मेह

तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया हो सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना ही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरना कोए, तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, पाणी पावक तनह किया, पंकज मोह पग नहीं चाल, हम देखा तै डूबी अले, मान एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहो, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा, पातशाही दसवीं कव्यो वाच बेनती जाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा, हमरे दोष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोह बचावहो, सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे आए, सब बैरन कौ आज संघरे आए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की राय प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अबर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दै मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए, पूजो सदा हमारे पछा, श्री अस्तुज करे हो रक्षा, राख ले हम राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम्होंपुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु पर काशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताही हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सुई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार दस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोबद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरिया सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दी अपारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझो चार, तुम सब ही तेरा तंदरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ता का मूढ़ उचारत भेदा, जा को भेव न पावत भेदा, तां को कर उपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तेती,
तुमरा लखन जाय पसारा।

सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते गौ आंख तरे नहीं आने आओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने आओ। सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने आओ। सरियस बान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तोहे बखाने आओ। दोहरा सगल

अपना बिरद समारिया दुर्त गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उभारिया पार

मन तन देहि सुखाली रहौ। पात ते उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा। बख्श लय सब सचा साहेब, सुन नानक की अरदासा। पात ते उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬ ਵਾ, ਚਾਕਰੀ ਕੀ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੋ ਚਾਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ ਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀ ਬੂਹ ਹੈ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਔਗਣ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੋ ਆਪਣੇ ਪਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਕਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕਰ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਕਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਪੜੰਤ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੜੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੜੀਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਅਚਨਚੇਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਣ ਹਿਲਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਟਪਕਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਤੂੰ ਚਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ।
श्री चंद कहन लगा, गुरदेव पिता आप दी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोनियां गल्लां करन लग पए। दरख्तां तो मिठाई और दरख्त भी जंडदा जिन्हों कोई चंगा फुल भी नहीं लगता, आप कहिंदे नूं मिठाई एक पासे हो गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने दूजे साहिबजादे बाबा लखमीदास नूं बुलाया, बेटे तू इस दरख्त ते चढ़ जा और हिला झून, मिठाइयां संगत दे चवंडनियां ने, हाथ जोड़ के। लखमीदास जी कहन लगे, गुरदेव पिता दरख्तां तो मिठाई और दरख्त भी जंडदा जिन्हों कोई माड़ा मोटा चजदा फल भी नहीं लगता। वड्डे बिराता ठीक कहंदे ने, आप दी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोनियां गल्लां करन लग पए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सेवा दी मूर्ति, निर्माणता दी मूर्ति भाई लैणे नूं जो संगत दे सब तो अखीर बैठा सी, आवाज मारी, इशारा कीता, भजिया होया आया, कदमा ते मत्था टेकया, हुकम बहुत संगत आई है लैणा जी, इस दरखत ते चढ़ जाओ, तेनू जोर दा झूणो, आपा मिठाइयां वंडणियां ने संगत दे। हुकम मन के जद दरखत ते चढ़न लगे, श्री चंद ने रोकया, आखिया लैणा जी दरख्तां तो मिठाई अनहोनी गल है, जगत की आखेगा, पर लैणा जी चढ़दे गए, श्री चंद रोकदे ने, दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकदी। तो लैणा जी कहंदे ने, मिठाई टपके भावे ना टपके इस नाल साडा कोई मतलब नहीं, असी ते गुरदेव दा हुक्म मनना है, बस हुक्म मन के खुशी लैनी है, वचन मन के खुशी लैनी है। गुरु अंगद देव जी महाराज वाकई गुरु नानक की खुशी ले सके, गुरु नानक की प्रसन्नता के पात्र बन सके, और ये उन्हां दा श्लोक जो है उन्हां दे किरदार नूं ही सामने उजागर करता है कि चाकर लगे चाकरी नाले गारगवार। चाकर एक ते चाकरी करे, सेवा करे, पर सेवा करन दे नाल नाल सेवा दा ही हंकार करे, गर्व प्रगट करे कि सिर्फ सेवा दा हंकार ही नहीं, गल्लां करे घनेरियां, जरूरत तो ज्यादा बोल बोले, जिन्हां बोलां दी लोड़ ही नहीं ओ बोले, और बोलां दे अहंकार प्रगट करे, गल्लां करे घनेरियां, कसम ना पाए सा, ये मालक दी खुशी नहीं ले सकेगा, ये मालक दी प्रसन्नता नहीं ले सकेगा, फिर किस तरह लवे, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मां। अपने आप नूं गवा के, अपने अहंकार नूं गवा के सेवा विच लीन होवे तां किथे जाके अध्यात्मक मान प्राप्त करेगा, अध्यात्मक रस प्राप्त करेगा। नानक जिसनूं लगा किस मिले, लगा सो प्रवान। जिस दी सेवा विच ए लग्या है बस उस दी सेवा विच ही लग जाए, प्रवान हो जाएगा, कबूल हो जाएगा। उही प्रवान है जो जिस दी सेवा विच लगा है, बस एक लीन एक अवस्था बना के सेवा कर रहा है। दूजा श्लोक जो दूजे पातशाह दा है वो ए है, नाल इयाने दोस्ती कदे ना आवे रास। कहिंदे दुश्मनी ते मित्रता बराबरी दे तल ते चाहीदी है, अगर तल बराबरी दा नहीं तो अक्सर देखण दे चाया है वो दोस्ती भी सफल नहीं आउंदी, और वो दुश्मनी भी किसी हद तक बेमजा होंदी है। एक कमजोर ते ताकतवर दी दुश्मनी बेमैनी है, एक मूर्ख ते सियाणे दी दुश्मनी दरअसल ये ऐसी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि जैसे पानी दी लकीर हो, वो कोई ठहरदी थोड़ी। इस विच ये नहीं कह रहे कि छोटे दा वड्डे नाल संबंध ना होवे या वड्डे दा छोटे नाल प्यार ना होवे। महाराज कहिंदे ने जिसनूं कहिंदे ने मित्रता, जिसनूं कहिंदे ने दोस्ती, वो ते बराबरी दे ही तल ते हुंदी है, कुछ ना कुछ बराबरी चाहिए। असी देखते हाँ किधरे दो पुरुषां दे धन की बराबरी ते नहीं पर गुणा की बराबरी है दोस्ती हो सकती है, दो पुरुषां दे जात पात की बराबरी ते नहीं
पर कला ते ज्ञान दी बराबरी हो सकती है, सियाणप दी बराबरी हो सकती है, क्योंकि वर्ग सिर्फ धन दा नहीं, वर्ग सिर्फ स्वपन दा नहीं, ते वर्ग सिर्फ सियाणप दा ही नहीं, वर्ग सिर्फ कला दा ही नहीं, अनेक वर्ग ने। किसी भी तल ते दो वर्ग आपस विच मेल खावन ते फिर दोस्ती हो सकती है, पर कोई वर्ग मेल नहीं खांदा। असी देखदे हां कृष्ण ते सुदामे दी दोस्ती, ये ठीक है कि धन करके सुदामा ते कृष्ण दा कोई मेल नहीं, वो राजा है, इसदे कुल कुछ भी नहीं, रहण दी चंगी कुटिया भी नहीं, वो कंचन दे महल ते मोतियां दे अंबार विच रह रहा है, इहदे कुल दो वक्त दी रोटी भी नहीं, लेकिन इतिहास साक्षी है दोस्ती बड़ी गूढ़ी, मित्रता बड़ी गूढ़ी, कि जगत दे तमाम रहबरी पुरुष कहंदे ने मित्रता उत्थे गूढ़ी आउंदी है जिथे बराबरी दा तल होवे। तो कुछ ना कुछ बराबरी दा तल है, वो की है, ज्ञान दा तल दोहां दा बराबर है, जो कृष्ण कोल ज्ञान है वो सुदामे कोल भी है, जिहड़े दैवी गुण कृष्ण दे कोल ने वो सुदामे कोल भी ने, जिहड़ी लंबी सूझ समझ कृष्ण कोल है वो लंबी सूझ समझ सुदामे कोल भी है, जो अणख ते सूर वीरता कृष्ण कोल है वो अणख सुदामे कोल भी है, गया जरूर है मुफलिस जरूर से पर जबान तो मंगे आने से अणख है। और जिथे इस तरह की अणख की बराबरी होवे, सूर वीरता की बराबरी होवे, दैवी गुणा की बराबरी होवे, ज्ञान की बराबरी होवे, इतनी बराबरी से की होया जे धन की बराबरी नहीं, की होया जे राज पाठ की बराबरी नहीं, दोस्ती उत्थे ही गूढ़ी होवेगी जिथे कुछ ना कुछ बराबर है। एक बच्चे ते बुढ़े की भी दोस्ती हो सकती है अगर अंदरूनी ज्ञान की बराबरी हो जाए, सियाणप की जो है बराबरी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दो बुढ़िया के भी दोस्ती ना होवे, एक बुढ़ा बहुत सियाणा है आलम है और एक कुबड है मूड़ है, नहीं होवेगा, मुश्किल है। हू बहु यही गल गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान पे करते ने कि मित्रता ले कुछ ना कुछ बराबरी दा वर्ग चाहिदा, वरना मित्रता होनी बहुत औखी है, बहुत औखी है। तो सतगुरु देव जी महाराज साहिब श्री गुरु अंगद देव जी दे ए वाक, आप कहंदे ने कि मित्रता ले बराबरी दा तल चाहिदा, जो जी होए सो उगवे मौका के आवाव, बीजे दिख मंगे अमृत वेखो एव न्याव, नाल याने दोस्ती वड्डा रोसो न्यो, पानी अंदर लेक जाऊ किसदा थाव न थे। बड़े कीमती उदाहरण गुरु अंगद देव जी महाराज ने दिते ने। दोस्ती दी रूपरेखा बयान करन तो पहले आप कहंदे ने कि मनुख दे अंतिशकरण विच जो कुछ आउंदा है जबान ओही कुछ प्रगट करती है। ए नहीं कि जबान ने जो कुछ कह दिता है ते मनुख ए आखे नहीं ये मेरे अंदर नहीं सी मैं एवें ही कढ़ दिता है, नहीं एवें ते निकल ही नहीं सकदा। जबान जो बयान कर दी है ए बैख रही है, इस तो पहले ए बोल कंठ दे चौंदे ने, इनू मधमा कहंदे ने, इस तो पहले ए बोल हिरदे दे चौंदे ने, इनू पसंती कहंदे ने, और इस तो पहले ए बोल नाभी दे चौंदे ने, इसनू परा कहंदे ने, परा पसंती मधमा बैखरी। हुण जबान चो बोल प्रगट हो गए ते बंदा आखे मेरे अंदर ही नहीं सन मैं एवें कह दिते ने ते मित्रा तू बुरा ना मनाई, पर सवाल पैदा होंदा है अंदर नहीं तो जबान बयान ही नहीं कर सकती, प्रगट ही नहीं हो सकते। साहेब गुरु अंगद देव जी महाराज ये जानकारी दे रहे ने कि जिस वक्त जेड़े बोल जबान चो निकले ने कम से कम उस वक्त ते ओ बोल अंदर सन, वरना निकल ही ना सकते। टंकी रेच पानी नहीं तो टूटी दे राही निकलेगा नहीं, टंकी जो है वो ते नाभी है और ये टूटी जबान है, इनू खोलांगे तो अंदर का पानी ही बाहर आवेगा, अंदर गंध है तो बोल गंदे निकलेंगे, अंदर स्वच्छता है तो बोल पावन निकलेंगे, पवित्र निकलेंगे। गुरु अंगद देव जी महाराज का फरमान
जो जी होए सो उगवे मोह का किया वाह। जो कुछ मनुख दे जीव दे चाहुंदा है ओही मुंह चो निकलदा है, ओही हवा दी तरह वो बोल जो है निकलदे ने। बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ए उन्या। इंसाफ दी गल वेखो, साहिबुल अंगद देव जी कहंदे ने बीज दा जहर है मंगदा अमृत है, बोलदा कौड़ा है चांदा दोस्ती है मित्रता, बोलदा रुखा है कि चांदा मेरी दोस्ती होवे। कौड़े बोलन वाले मनुख दी जगत विच किधरे भी दोस्ती नहीं है। हां दुश्मनी ते वर्त सकदी है, दोस्ती नहीं मित्रता नहीं। इस वास्ते साहिब कहंदे देखो ए न्याओ बीज दा जहर है मंगदा अमृत है, नीयत भैड़ी है और फल चंगे मंगदा है। महाराज कहने इस तरह का जो मनुख है कि दूसरे तल ते कोई सियाणा होवे दोस्ती निभेगी नहीं, इस तरह का जो इयाणा मनुख है नादान मनुख है उसके नाल किस तरह दोस्ती निभेगी जिसकी नीयत ठीक नहीं, जिसके अंदर बोल कौड़े ने। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निरजास। महाराज कहने निर्णा करके वेख लो कि इयाणे नाल वड्डे दी दोस्ती निभेगी नहीं। एक 80 साल दा बुढ़ा है, एक 5 साल दा बच्चा है, दोस्ती नहीं हो सकती। संबंध हो सकता है पिता पुत्र दा, संबंध हो सकता है पोतरे ते दादे दा, दोस्ती नहीं हो सकती, मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता तो मुराद है एक मिक हो जाना। तो उस 5 साल दे बच्चे दा और उस 80 साल दे बुढ़े दा कोई भी वर्ग मेल नहीं खांदा, किसी तरह का भी मेल नहीं जुड़ता, ना गुण दा कला दा सियाणप दा बोलां दा कुछ भी ते तालमेल नहीं बैठता। सोचने दा मूल गल ते सोचने दी है। तो गुरु अंगद देव जी महाराज कहंदे ने जैसे एक बिरध ते एक इयाणा नादान बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती, इस तरह मूर्ख ते सियाणा ये भी इस तरह ने। एक बुजुर्ग है एक नादान है, इत्थे उम्र करके इयाणा ते बड़पना नहीं लेना। वही बुजुर्ग है वड्डा है महान है जिसकी

0: लाश पौड़ी चाकर लग गए चाकरी जे चले खसमे भाए
1: हुरमत किसनू अगले वजो डूणा खाए।

कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी शैतं गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच पूछा अगम पार प्रभ कथन न जाए कच नानक प्रभु शरणागति राखन को समरथ रला में दसमेश मेश दीनो जी कलेश लेश लाओ जी विशेष शेष वांग जाप करा में करो मैं सत्संग संग रहो नाम रंग रंग नाहे होवे भंग भंग नाम बाटे भरम परम काव रस रस दोए दीर्घ दस दस में हृदय बस बस तेरो ध्यान धरम तरा में ध्यान बर बर दी जो दया कर कर तरो शीश कर

संतन तूर सर्व निधान सब पूंजी सतगुर संग नानक जागे और ब्रह्म के रंग सो जागे।

साद संगत गुर गुफै बह सहज समाज अगाध निवासी हो मैं रोग अरोग होए कर संजोग विजोग खलासी साद संगत गुरमुत शाबाशी साद संगत गुरमत शाबाशी।

इस गुफा में अखुट पन्ना इस गुफा में पन्ना इस विच बसे और अलख ना पाया इस विच बसे और अलख ना पाया इस विच बसे और अलख ना पाया इस विच बसे और अलख ना पाया अपे उपस प्रगट है आपे आपे उपस प्रगट है।

0: मनमुख अंधे सूझे नहीं। फिर आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए।
1: हर गुण गा

नौ दर ठक के धावत रहाए, दसवें निज घर वासा पाए। उठ अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणे। वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू।

आत्मन ज्ञान होता है। निरंकार के देश जाए सांसत रहे महाराज, निरंकार के देश जाए सांसत रहे महाराज।

जब आवे दीवारी वारी मंच बंद बंद है जुआ जुआ कर आवे दीवारी हम फिर प्यारा रावी है जब आवे दीवारी मंच बंद बंद है जुआ जुआ कर आवे दीवारी कहीं जान मैं तीर पतंगा कहीं जान भजनी करूंगा कई जन्म सौती सत हो कई जन्म है वृत हो मिल जल्दी मिलती बढ़िया कई जन्म फैल गिर चले कई जन्म गर्भ मिल चलिया कई जन्म साफ कर पाया रक्त राशि जो

हम अब गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाही। माया मोह परम पै पुले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की,

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚੇ ਨਰ ਬਰਨ ਜਾ ਤੇ ਅਰਬਾਤ ਨਹਿਣ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਦੇਖ ਬੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਧਨ ਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋ ਜਿ ਕਿਹ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗਿਣ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਣ ਮੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿ ਸੁਰ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਗਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਕ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਰਬਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਟਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਧਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਤਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਾਜਵੇ ਨਮਸਤ ਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸਤਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਰ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸਤਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਅਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਸਤਾਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੁਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਪੂਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਪੇਖਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹਾਂ ਪੇਹਾਂ ਜੀਤਾਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਇੰਦਰਮਾਨ ਅਨਦਾਨ ਤਿਰਵਰਗਾਂ ਸਰਗਾਂ ਹੈ ਅਨੀਲਾ ਨਾਦ ਹੈ ਜੇ ਆਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਵਰਣਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰਣੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਹੈ ਚੂਜ ਹੈ ਜੰਜ ਹੈ ਮੀਘਰ ਫੀਕਾ ਤੰਦ ਹੈ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਭੂਜ ਹੈ ਸੂਜ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਾਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਸੋਕ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਵਾਹਿ ਗਹਿ ਮਾਨ ਨਿਦਾਨ ਅਨੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤਿ ਨਿਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਧਿ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਾਧਿ ਬਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰਗ ਬਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਪ੍ਰਦੇ
नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेगी परमी भोगी भुगते नमो जोग जोगेश ब्रह्म परम जुगते नमो नृत्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेश धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशा नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संघ सनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र जांत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्व सतरंग प्रणाशी ग्रीवलगनंदा सर्वदान सदा सचिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे रूपे समाज तुलनेवासी सदा सदा बुद्धदा बृद करता अदर्दंग गंगो घरता परं परम परमेश्वर प्रोज पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्त पराजी समस्त धामंग तेरा जोर चाजरी शांग जले हैं थले हैं पीता वे है प्रभु अजुआ दी सब पेस है ऐप जंग प्रया दिशांत अगा दे बाधे नंदी स्वरूप है नमो सर्व मान्य समाज दिन दान्य नमाज तुम नरनाथे नमाज तुम परमाथे नमाज तुमंगा गंजे नमाज तुमंगा पंजे नमाज तुमंगा काले नमाज तुमंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वदेशे नमो राज राजे नमो सहाज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समातंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे गुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हरिद्र सिद्धं नवासी जरपटशंत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म लग कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल शांत दव प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मंत्र मान देवा पेवा दुधार सर्व बालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख दार मूर्त अजो नाद सेख देश और न पे जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम भीन पेख दामू न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तदाहि एक मूर्त अनेक दर्शन अकीन रूप अनेक खिल खिल अखिल खिल अनंत को ब्रेक देव पेव न जानी जय बेदर देव रूप रंग न जात पात सुजानी कह जेव तात्मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर बिर चतर जाक मान ही प्रतीन लोक चौदांग के बिखय जग जापी जय जाप आद देवनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचो सुयम पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूदल अख पेश रंग राग न रंग जाक जात बादना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूपामी गान अस्त एक पुरख दूत गर्भगंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्व कायक सर्व गोप्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदयन बेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंग अर देख परम वेद प्राण जा कह नित भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बहुचित मद पार छंद तव प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन पंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्जन नाश राजन बाहान सा राजन राजु पानन पार देवान देव उपमा मान इंद्राणेन्द्र बालन बाल रंग निरंक कालन काल अनुभूत अंग अपाप अंग गात्मित पार गुणगान उदार मुनगन प्रणाम निर्पैन काम आतदुत प्रचंड मित कथ अखंड आलिश कर्म अदृश धर्म सर्व प्रणाढ़ आन दंड भाड्या चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मकंदे उधारे अपारे हरियं करियं नामे कामे भुजंग प्रयाद छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भरती चतर चकर बाले चतर चकर काले चतर चकर बासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए चाचरी छंद
ना शत्र न मित्र न परमंग न परम पित्र न कर्मंग न गाही जन्मंग जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रति सदि सदृश कृष्ण भगवती छंद दल प्रसाद कथते के आशिज देश है कि अभिज बेश है कि अगन कर्म है कि अभिज भरम है कि अभिज लोक है कि अद सुख है कि अवधूत वर्ण है कि वे भूत करण है कि राजंग प्रवाह कि धर्मंग तो जाए कि अशोक वर्ण है कि सर्वा वर्ण है कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपन उपाय कि आद देव है कि आप अभेव है कि चतरंग विहीन है कि कह दीन है कि रोजी रजा कर ही मेर हाक है कि पाक भी है वह कि क्या फुल गैब है क्या फुल गुना है कि शाह निशा है के राज के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र धाने हैं के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेश है के सर्वत्र माने आए सदैव प्रधाने आए के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान आए के सर्वत्र मान आए के सर्वत्र इंद्र आए के सर्वत्र चंद्र आए के सर्वं कलीम है के परमंग रहीम है के आकलोलाम है के साहेब कलाम है के उसनोल बजू है तमाम रजू है मेसल सलाम है सलीकित मुदाम है गनीमल सकाशता गरीबल बरसता है बलंदर मकान है जमीन जमाना है कमीजल तमाम है रुजुअल नदान है हरिफल जीमर जागि जगिन है अनेकल तरंग है भेद है पंग है अजीजल निवाज है गनीमल खराज है निरौत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभुत प्रभा है सुजौत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समाज तो ब्राज है सदा सर्वसाज है समाज तुल सलाम है सदैव काम है इंद्रवाद स्वरूप है गाद अनूप है ओवंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिपादी गंजे गादी सुभंग सर्वभाग्य सु सर्वान रागे त्रिभुक्त स्वरूप है सज है शूद है नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है इंद्रोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है नंग है बेख लेख है परम कर्म नाद जुगाद है अजय भय भूत दूत है नास उदास दंद बंध है अभगत है विरक्त है नास प्रकाश है नजंत सुनंत लेख देख है लेख बेख टाय गाय संभ गंभ नीला नाद है नित सुनित जात जाद है चरपट छंद दव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद दव प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं भूते परमाथं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सदर न मित्र न दाते न माते न जाते न पाते नरसाक श्रीघ मितोमी गाय सदैव प्रवाह जय जाय भगवती शांत दव प्रसाद के जा हरजूर है कि हाजर हजूर है हमीसल सलाम है समाज तल कलाम है कि साहब दिमाग है कि उसनो चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है के रोजी दहेंद के राज कर करीमल कमाल है गौ सुन जमाल है गरीमल खराज है गरीबल नवाज है हरिफुल सिकन है रास लिव कन है कलंक प्रणास है समातुल निवास है गंजल गनीम है रजाय करहीम है समातुल जवा है कि साहेब गिरा है गनरक प्रणास है बैतुल निवास है के सर्वल गवन है मीस वन है तमावल तमीज है समातुल अजीज है परम परमीश है समातुल अधीश है अधीसल लेख है मीसल पेख है जमीन और जमा है मी कुल माह क्रीमल कमाल है गजरो जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मित्र सुभाष है कि आजव स्वरूप है कि मित्र विभूत है कि मित्र बसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग नंग है कि मित्र भंग है मद पार छंद दव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण बदाम हर भर गंज हर नर पर पंज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड हर नर मंड
अनुपवन आशु मुन मन प्रकाशु गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश जियांग आसन भंग उपमा पारगत मितुदार जल थल मांडो देश पांडव जल थल महांत देश अंत अनुपवन आशु त्रैत धारद्रास आजन वाह कैसदा ओंकार आदि कथनीय नाद कलखंड ख्याल गुरुवर काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जिगात अजन बात अन्न चंज गात अनरंज बात अंटुट भंडार अंठट पार अडीठ धर्म अतटीठ कर्म अण ब्रणनंत दाता महंत हार बोल मना शंद दव प्रसाद करुणालया है अरकालया है खलखंडन है मैं मंडन है जगदीश ब्रह परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रत के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वबास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड स है खलखंड है परते पर है करुणा कर है अजप जप थप थप है अकृता कृत अमृत अमृत है अमृत अमृत करुणा कृत है अकृता कृत तरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है अजब कृत अमृत अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निर्भनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अरगंजन है रिपदापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है अर्धार है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवास है जात के जास है पुजंग प्रयात शंब नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादिंग बभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आशासे नमो भंग भंगे अभंगी स्वरूपे नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक श्री शंभ अजय अलय भय भय पुवजु अनाश काश कंज पंज लख पाख काल दयाल लेख भेख नाम काम घाट अनाथे नंद परमाथे योनि मोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग अंजन लेखे भुजंग प्रयात शंब नमास्तुल प्रणामे समास्तुल प्रणाशे कंजलो नामे समास्तुल निवासे नृकामंग विभूते समास्तुल स्वरूपे गोकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सदरंग प्रणाशी ग्रीमलक नंदा समास्तुल निवासी अजैव भूते गजैव गणि में हरियंग करियंग गणिमदरि में चतर चक्र वर्ति चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते चतर चक्र वर्ति चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ तव प्रसाद सवैये ओंकार सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवी श्रावक सुध समूह सुधान के देख पर कर जोग जती के सूर सुरार्दन सुध सुधा दिख संत समूह अनेक मति गए सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखित प्राण पति गए सरी भगवान की भाई कृपा हूं ते करती बने करती माते मतंग जर जर संग अनूप तंग सुरंग सुधारी कोट दुरंग गुरंग से कुड़त पौन के गौन को जात नवारी बारी बजान के भूप बली विद न्याव सी धन जात बिचारी एते पय तो कहाँ पय भूपत अंत को नंगे पाय पधारी जीत फरे सब देव दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हंस नह है राज हजारी भूत भवैख भगवान के भूपत गौन गणे नहीं जात बिचारी सरी पद सरी भगवान भजे बने अंत गवंत के धाम सुधारी तीर्थ नहान दयादम दान सुसंजम नियम अनेक वसिख है वेद पुराण कदेव कुरान जमीन जवान सुवान कदिख है पौन हार जदियतार सब सुजार हजार कदिख है श्री भगवान भजे बन भूपत एक रति बन एक न लेख है शुद्ध सुबादर अंत दवा सुशासना दुर्जान दलेंगे बारी गवान पर मन मह कर पर्वत वंखल नहा लेंगे तोर हरीन मरोर वासन मत मंदंगन मान मलेंगे सरी पद सरी भगवान कृपा बहन त्याग जहान निदान चलेंगे
ਵੀਰ ਪਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਆਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰ ਗਿਧਾਰ ਪਛਈਆ ਦੌਰਤ ਦੇ ਸਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੀ ਗੜਾਣ ਕੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੁਵਤ ਨੀ ਜਗਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇ ਕੋ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਇੱਕ ਦਵਈਆ ਦਾਨ ਬਦੇਵ ਨੰਦਨ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਸਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਦਾਪਨ ਵਾੜ ਜੈ ਤੁਨ ਬਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਾਏ ਜਗ ਸਤਰ ਸਵੈ ਆਪ ਲੋਕ ਜਪੈਂਗੇ ਮਾਨ ਵਿੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਧ ਬਜੋਂਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਭਰੇਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਜੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਬਾਜ ਭਰੇਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਬਰਸੈ ਪਾਗ ਤੇ ਨਾਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਤਰੇਂਗੇ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਦੂ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਭਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਫਿਰ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੈ ਲੋਕ ਗਏ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀ ਵਖਿਆਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁਬੈਸ ਬਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਘਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਵਾਰ ਬਾਜੀ ਦਿਸਾ ਮੈਂ ਕਾਉ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਓ ਕਉ ਬਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤੈ ਪਾਸ ਕਉ ਮਰਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਥਾਇਓ ਕੂਰ ਕਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ ਕਉ ਬਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤੈ ਪਾਸ ਕਉ ਮਰਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਥਾਇਓ ਕੂਰ ਕਰਿਆ

तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहे, सब किछ आपे आप दूजा कहां के। आप करहु प्रभ दान आपे आप लेह, आवण जाना हुकम सब निहचल तुद थे। नानक मंगै दान कर कृपा नाम देह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। टोडी महला पंजवां, हार बिसरत सदा खुआरी, तां कौ तोखा कहां व्यापै, जा कौ ओट तुहारी। हार बिसरत सदा खुआरी, तां कौ तोखा कहां व्यापै, जा कौ ओट तुहारी। रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी, नव खंडन को

गाए जाकौ कृपा तारी। सो सुखिया धन उस जन्म नानक तिस बलिहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए जाकौ कृपा तारी। सो सुखिया धन उस जन्म नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु।

0: प्रभु दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

जेरा निर्पोन निरंकार सचनाम जाका किया सब जहां सेवक सेवे क्रम चढ़ाओ तिन्नी रंजना मंचा सिख्या गुर विचा नदरी क्रम लगाए पा कुलू चरखा चक्की चक थल गुरु ले बहुत आनंद लड़ मधानिया अने

संतन अवर न काहू जाने, संतन अवर न काहू जाने, बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन का राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी, निरपा होए रहे।

0: और पर संत के दुखन यार जकट है,
1: दुखन जब नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होई मलि।

0: के बख्शी वा दीवा हमा किस बगोश कहंदे ने ओ के जो ओ जेड़े तेरे अहलकार सन बख्शी खांस खास तौर ते खजानसी जिन्ना पास खजाना हुंदा सी चालना खो श्रीवा जिन्ना पास खजाना होवे जिवें दशमेश पिता जी दा दे बख्शी सन खजानसी सन भाई नंद चंद चालना खो श्रीवा ओ खजानसी सन गुरु करदा हर प्रकार दा साजो सामान उन्हां दे जिम्मे होया करदा सी बड़े अच्छे तरीके नाल ओ सेवा निभांदे रहे पंगानी दे युद्ध विच उन्हां ने अपना हिस्सा जितना क पै सकदा सी पाया पर जदों कोई प्यारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बीड़ लिख के हजूर दसम पातशाह दे पासों मंजूरी लैण लई पहला भाई नंद चंद जी बख्शी नू खजानसी नू मिलिया ता उन्हां ने देख के हजूर दी पवित्र बीड़ ललचा गए मन विच लाल चा गया कहन लगे तू ए बीड़ पोथी साहिब सानू दे दे हजूर तो दस्तखत करवा के मंजूरी लैके तैनू वापस दे देवांगे उसने भरोसा किया इतमान किया पर भाई नंद चंद जी ने हजूर तो दस्तखत ते करवा ली ते पर बीड़ साहब लैके नस गए प्यार लखो श्रीवा आन वाले समय विच जो कुछ उन्हां ने हिस्सा पाना सी ओ नहीं पा सके हजूर दी पूरी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सके जदों इस उदासी महात्मा ने बेनती की थी ते हजूर ने भाई नंद चंद जी नू तारिया जानसिया पर वो सामने न हो सकिया तो बख्शी खजान थी इउं असीं कह सकदे हां खजाना मंत्री प्याला खो श्रीवा ते जिस तरह तुहाडे खजाना मंत्री किन्ना क सच बोलदे ने प्याला खो श्रीवा जिन्हां नू तुसीं किन्नी वारी बनाया खजाना मंत्री ओ किन्ना क सच बोलदे रहे हुण किन्ना सच बोलदे ने इसे तरह दे ओहो सन रूहां ओहो ही हुंदियां ने सिर्फ शरीर बदलते रहते ने प्याल खो श्रीवा के बख्शी ओ जेड़े तेरे खजानसी सन बख्शी सन तेरे अहलकार सन वा दीवान जेड़े तेरे दीवान सन वजीर सन तेरे अहलकार सन हमा किज़ब गोस ओ जितने तमाम लोग सन ओ भी तेरे वांग किज़ब झूठ गोस्त बोलते सन गो कहंदे ने गोस्त इकट्ठा करके कहंदे हन ओ भी झूठ कहंदे ने ओ भी झूठ बोलते सन इसे करके ते सतगुरु जी ने 500 साल पहला ए विचार कहा सी ए शब्द कहन तो 300 साल पहला सतगुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया सी काल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसे नाही कहे चढ़िया माज की वार महला पहला राजे सिही मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नहदा पाइन काओ रात पित कुते हो चट जाहो जिथे जिया होसी सार नकली वड्डी लाए तबार मलार की वार महला पहला उसे विचार तारा नू तकरीबन 300 साल बाद दशमेश पिता जी वर्णन कर रहे ने कि ए जेड़े तेरे खजानसी सन जेड़े तेरे वजीर सन ओ भी जेड़े तमाम सन ओ भी तेरे वांग किस्म झूठी गोश्त कहंदे सन ओ भी तेरे वांग झूठ बोलते सन सियाणियां दा एक विचार है जिसनों असीं आम तौर ते कह देंदे हां ते लोग ये गल कहन जथा राजा तथा प्रजा भी जेहो जिहा राजा हुंदा है प्रजा ओहो जी हो जांदी है पर सियाणे इहदे विच थोड़ी जी तब्दीली करदे ने ओह कहंदे ने जथा राजा तथा पड़िया जथा पड़िया तथा प्रजा जिस प्रकार का राजा हुंदा है ओदे उस मुल्क वे जेड़े पढ़े लिखे लोग हुंदे ने ओ भी राजे वर्गे हो जांदे ने ओ भी राजे वर्गे हो जांदे ने एक दिन खाना खांदे आ अकबर दी जबान तो निकल गया वेंगणा दी सब्जी बई बड़ी कमाल दी है ए सेहत वास्ते कई फायदे पहुंचांदी है ते बीरबल बड़ी तारीफ करन लग पिया कोई दिन ही होए सन जदों फिर खाना खान लगे अकबर ने कहा भई ये भी बैंगणा दी भी कोई सब्जी है इन्हां दा तां रंग ही काला है ਉਂਝ ਵੀ ਜਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਏ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਗਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਰਬਲ ਉਦਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨ ਇਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਹਾਂ ਪਨਾ, ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਵੈਂਗਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੈਂਗਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
1: ਹੱਥੋਂ ਚੌਲ ਵੀ ਦੇ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਚੌਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਦਾਮਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖਲੋਤਾ। ਸਤਿਸੰਗ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਸੁਦਾਮਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਉਸਤੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਏ ਵੇਖ

ही आवाज तक होते ही आवाज तक अपनी समाधि बिछो हो जाही आवाज तक हो जाही आवाज तक अपनी समाधि बिछो।

हो जाई हवा चल अपनी समाधि विचार ओ बंदे नु जहान विच ओ बंदे नु जहान विच बंदा टुकरा लेना बंदे नु जहान विच बंदा टुकरा लेना

सीधे परवाने सीधा गुरु सुखदेव भक्त सिंह जह परवाने गुरु सुखदेव भक्त सिंह जह परवाने दिल्ली सोचा सोच दे जोड़े वरदाने ओ दिल्ली सोचा सोच दे जोड़े वरदाने

0: सच्चे शहर क्या नहीं करते रहें अजना मेरा हरारो
1: मारिया पाया तुझे नाम।

गोबिंद सिंह महाराज पातशाह के बख्शी हुए फतेह बुलाओ। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। आओ समा जरा सीमित है, आप ढाडी सिंह पासों कल सुन रहे थे सुबह भी दो वीर बहादुर जिन्हां ने हरिमंदर साहब की गदगी है जी हटाई, दो ही सन, दो सरदार बेअंत सिंह सतवंत सिंह जी। दोहां का ही इतिहास है जरा ढाडी सिंह हुण कह लगे है ये दुआबे के बबर जिस दे विच होर भी नौजवान सन, माझा मालवा रियाड़की तिहाड़े के होर भी सन, वख वख मीटिंगां करते सन कि देश आजाद है जरा इस नूं कराउणा है आपां। इन्हां दा नां जथेबंदी का नां जरा बबर रखिया गया। आओ इन्हां ने मीटिंग कीती, उस मीटिंग विच कहिंदे जैलदार आ जिहड़ा जैलदार उस अंग्रेजां दा टौटा बड़ा ते उस नूं फाड़ा जिहड़ा भुगताया जावे पिंड राणीपुर। इस पिंड दा सी जैलदार वी ओह वड्डा टौटा जिहड़ा दुआबे विच ओह है उस नूं फल भुगताया जावे ते गड्डी चढ़ाया जावे। कहिंदे इस दे घर दे विच इक चिट्ठी ले के नौजवान रखे आए जी तैनूं 8 दिनां दे अंदर अंदर गड्डी चढ़ा देना ते तू कोई प्रबंध आ जिहड़ा करना तां कर ला। ते चलिया गया चिट्ठी ले के अंग्रेज कोले। उसने कहा जिहड़े बबर है उहनां कोले दा पता नहीं कोई चीज है जां नहीं, कृपाना हैगी है। अंग्रेज ने कहा मैं तुहानू आ दो बॉडीगार्ड दिंदा बंदूकां वाले, ये तेरा हर हर वक्त पहरा जिहड़ा ये रखिया करनगे ते तेरा तां कोई वार नहीं पिंगा करदा। कहिंदे दो गनमैन मिल गए, बड़ा हंकारिया सी ये तां अगे कहिंदे बैठा सथ दे विच एक जैलदार अते नौजवान जिहड़े हाले 6 दिन होए सी, इन्हां दो नौजवानां दे विचों इक तां जोगी बन गया। पता नहीं किथों इसने बीन सिखी ते किथों इसने बीन जोगियां वाला बाणा जिहड़ा ओह पालिया है। अते इक मुंडा सी जिहड़ा ओह कलंदर बन गया, इसने पता नहीं किथों दो बांदर है जिहड़े ओह ले हन, इक पता डिब डिब जे जिहड़े वजाउंदे हुंदे है, मदारी जिहा बन गया, कलंदर जिहा बन गया। दो बांदर इसने लै ले अपने कोले, बंद ते बांदरी ते चले गए उहदे पिंड दे नेड़े। पता लग गया भी बैठा सथ दे विच जैलदार ते जिहड़ा जिहड़ा जोगी बनिया से ओह कहण लग्गिया लवी तू इउं कर कलंदरा, इत्थे राह दे उत्ते ना जिहड़ा पिंड नूं राह जांदा सी इहदे उत्ते जा के इत्थे पहरा ला ला, तूं कोई कला कला कला सिपाही है जिहड़ा ओह अंदर ना आ जावे। ते मैं चलिया सथ दे विच ते दीन दे लहरे सुनाउणा जाके जैलदार नूं, चलिया गया दीन वजाउंदा वजाउंदा। इस नूं पता तां लग गया सी वी जैलदार बैठे इक पासे ते कोल कोली कट बैठे है, ते कहिंदे लहरे वजाउंदा दीन दे आसे पासे नाथ बन के तुरिया फिरदा पिंड दे। ते जैलदार दे नजर पै गया ने आवाज मारे कहिंदे ओ जोगिया क्यों चुटकी चुटकी आखा मंगदा फिरदा, आ जैलदार नूं लहरे सुना बीन दे कोई सप वसा। इस आ गया कोले कहण लग्या जैलदारा सप वसावां, हां कहिंदा नाथां दी कोई सेवा भी करेगा, कहिंदा सेवा बतेरी करूंगा, तुम खा अपना नाग वसा कोई जय कोई राग सुना बीना बीन सुना। कहण लग्या बीन सुनावा बीन रागा विच सुनावा के फिर फिल्मी तर्जा विच, ये कहण लग्या रागा विच ही सुना रागा विच। कहण लग्या राग जानदा भी है, कहिंदा राग मैं छोटा हुंदा लाहौर दे कंजरां नाल रहा, ला राग मैनूं बतेरे आउंदे है ते रागा विच ही सुना। कोले बैठे है कहण लग्या मेरे कोले सप भी बड़े है, मेरे कोले सप भी बड़े है, कहिंदा सप्पां दे दर्शन करा दे। हुण कोले ही इहदे बॉडीगार्ड आ जिहड़े ओह बैठे हन ते कहण लगे आ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਖਪੜਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਦੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਸੱਪਣੀ ਹੈ, ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 28 ਦੰਦ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਇਦਾਰਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ 500 ਕਹਿੰਦਾ 250 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ 250 ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 500 ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਲਦਾਰਾ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਗਾ।

मिलाप दी बिंद को पालक घड़ी का बयान की तरह ओ एक बिंद ओ एक पल ऐसा खूबसूरत सी जिस पल विच मेरी ते मेरे मालिक दी गल सांझी हुई। उन्हें बिंद को भर मेरी गल सुन ली कि जदों जिस गल लई मैं तरसदी सां कदी मालिक एक बिंद भर मैनू बुलाई रहे

क्या करे, पदार्थ की गुना नहीं पर रब नाल टुट के गुना ते जे तू रब नाल जुड़ जाए फिर की होएगा, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खवंदियां बिचले होवे मुकुत। पर ये जुगत के लिए निरंकार नाल जुड़ के संसार दे सुखां विच रहण दी ये मेरा गुरु दिंदा है। पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत फिर हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खवंदियां बिचले होवे मुकुत। तो क्योंकि मालिक मेरा रब जरा उनके को पदार्थ कोई नहीं, उनके को पदार्थ कोई नहीं। गुरु के अंदर बाणी अंदर सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकर करतल भरे कोई जाके बैठे कि जिन्हें दिन अंदर सर्दियां होन उन्हें दिन अंदर सूरज नहीं चढ़ता, जिन्हें दिन अंदर सर्दियां होन उन्हें दिन अंदर धुप नहीं होंगी, बल्कि ना हो तो परेशान हो जाएंगे धुप हो गई। धुप तो नफरत ना पैदा कर केवल इसलिए क्योंकि तू अषाढ़ के महीने जले है, तेनू इसे संसार तो नफरत इसलिए हो गई जिंदे विच कोई दो रह नहीं कि अषाढ़ अग है संसार अग है, पर क्योंकि तू अषाढ़ के महीने विच इस अग तो जले है इसलिए तेनू संसार तो नफरत हो गई। जे तो कभी निरंकार रूप सर्द रूप तो विच बैठ के इसे संसार नू देख लो तेरे देखन ते मनन विच ही फर्क हुंदा कि गुरु ने आप दिता इसलिए कहन लगे।

एहसास बदल गया। हुण ओह संसार चंगा लगता है क्योंकि निरंकार का एक पक्ष भी इसे संसार में भुगतना है, वो है सेवा। सेवा जो संसार में सेवा नहीं हो सकती, संसार सेवा नहीं तो चाहिए ना, लेकिन दुनिया जो दुनिया ही नहीं तो सेवा किन करेगा। संसार है तो तद ही सेवा का साधन बने, जो दुनिया है तो तद ही सेवा का साधन बने। इसलिए एक ख्याल करें, जे तू दुनिया तो नफरत कर रहे हैं तो उनका कारण है क्योंकि तू रब तो टुट के दुनिया भोगन की कोशिश कर रहे, उसे असार है। रब तो वक्त हो के पदार्थ इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जलन। जे तू निरंकार नाल जुड़ जाए फिर तो निरंकार का संबंध ही तेरे अंदर एक निग पैदा करेगा।

मन दे दिया चरनार गई। उनका नेड़ा रिश्ता अटुट रिश्ता बन गया जिमें भंगड़ा कमल फुल तो वख नहीं हो सकता। भवर तुम्हारा ए मन हो गए हर चरण हो कौला हरी जो चरण मानो उनके कमल फुल ने जिमें वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिंदा पर कमल फुल नहीं छड़दा। इस तरह प्रभु चरणा नाल जुड़िया होया मनुख संसार दा जिन्ना पदार्थ है दुनिया की जिन्नी वस्तु है समेत इस संसारिक जीवन दे सब कुछ कुर्बान कर दिंदा क्योंकि उन्हूं तो अपना साहो अपना जीवन उनके दर्शन में ही दिसदा। मन बेदया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो साहो दा की है जीवन बाणी अंदर अनेक कथा स्पष्ट किया गया साहो नूं साहो शब्द नूं जीवन वाचक वरत्या गया। साहो दा अर्थ है साह कहने लगे मैनू तो हे प्रभु तेरे दर्शन जड़े ने ओ ही मेरे साह ने मेरा जीवन सज्जन बाणी अंदर अनेक कथा आखिया तब लग तुझे प्राणी पिछड़ सरे वो जब लग घट में सासा क्योंकि घट में सासा तो पार है जीवन पर्यंत जो सब अर्थ है जीवन जिस वे सह रुकता जीवन खत्म हो जाता है। गुरु कहते मैनू तो हूं तेरे दर्शन जेड़े ने मैनू सह दिसदे ने जे तेरे दर्शन ना हूं मेरा सह रुकता है। हूं तो मैनू यो लगता है मानो तेरे दर्शन ही मेरे सह ने मेरा जीवन

गोविंद राय दी ही ओट है ते उन्दी सेवा ही मेरे जीवन दा सब तो वड्डा लाह है। अगली गल कह लगे जदों साध संगत विच जुड़ के बैठ के उन्दे गुणा नू गाउंदा है, इत लफज गाओ नहीं गाहो है, गाओ का मतलब होंगे जबानू बोलना कहना गुण गायन करने, तो गाहो का अर्थ होंगे उन्हें गुणा के अंदर की खोज करनी गा लेना। आखिर सान गाह कदों पाउंदा है, जदों ने सिक्के दाने कढ़ने होंगे किसान गाह कदों पाउंदा है, अजे दाने सिक्कियां दे विच छुपे हुए ने, अजे दाने पराली दे विच छुपे हुए ने। लोड़ है किसान नूं गाह पावे ते अंदर छुपे हुए दाने बाहर कढ़ लै जिहड़ा जीवन ने। गुरु कहते जदों साध संगत विच बह के प्रभु दे गुणां दा गाह पैंदा विचार हुंदी है, गुण अंदरों उन्हां दी विचार नाल उन्दी महानता कढ़ी जांदी है, फिर कहते ने उन्हां गुणां दा इन्ना असर हुंदा है कि फिर संसार दे अवगुणां दी विकारां दी जहर उन्हूं कोई नहीं सकदा।

और मैंने, तो तुम भी कभी चल कारना भी कर दीजा, पर कभी मन में हमें ना आ जाए कि मैं अपनी कारना नाल प्रभु नु पाया है। गुरु कहते ने यही हों आ जाएगी, जिथे हों आएगी उथे हरी नहीं रहेगी। कहने लगे इतने एक लफज तेन देना और अगली तुक हूं बारह माह के इस भोग के महीने की अगली तुक पढ़। कहते जय ती उपजी तय मिली सच्ची प्रीत समाहो, पर कहने लगे मैं स्पष्ट करना कि कर दे नीनी पार ब्रह्म। मेरे प्रभु ने आपे ही बाह फड़ के अपने कोल बुला लिया, कर गह लीनी पार ब्रह्म। मेरी काल में बल्कि मैं हैरान होया, श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर छोटे जे सूक्ष्म भेद नूं कहदे अजीब ढंग नाल स्पष्ट कीता गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर तुसीं देखोगे बहुत ही थावें यह नहीं कि मैं तेरा पल्ला फड़िया, जिथे आया मैं तेरी शर्म आया पे आख्या होगा पल्ला फड़, मैं तेरी उंगल फड़ के बाहर निकली। बिल्कुल रोजाना जीवन च देख रहे हो, किसी भी मेले के समय किसी भी रश के समय आप आखने बेटा मेरी उंगल फड़ लै, पर यह गलत है। बच्चे आखिए तू मेरी उंगल फड़ लै, यह गलत है, क्योंकि बच्चे के हथा में उन्ना बल नहीं, जरा का धक्का पवेगा उंगल छुट जाएगी। जेड़ा बाप आखता ना तू मेरी उंगल फड़ लै, इस अणप नहीं। बच्चा कहते तो मजबूती ना उंगल फड़ सकता, बच्चा यार बल भी थोड़ा, जरा धक्का पिया उंगल छुप जाएगी। सियाना बाप यह नहीं कहता तू मेरी उंगल फड़ लै, कहना नहीं यार मैं तेन बहु फड़ लू, मैं तेन बहु फड़ लू। और ज्यो ज्यो धक्का पड़ता है उवे उवे बापू का हाथ मजबूत होता जाता है कि तो मेरा पुत्र मेरी संतान मेरे हथ में छुट ना जाए। हूं देखो भला कभी हृदय में सोचे इन दोवों सेफ के डर, जिस बापू ने यह आख्या कि तू मेरी उंगल फड़ लै उन्हें बच्चे ने ज्यादा सेफ किया कि जिन्हें आख्या नहीं खड़ो मैं तेरे उंगल फड़ लेना मैं तेन बहु फड़ना। पर गुरु ने बार बार बाणी में लोग बच्चे गुरु कहते ने मेरा रब एडा महान है, वो कहता जिथे भी लोड़ पड़ी वह कहता मैं तेरी उंगल फड़ना मैं तेन बहु फड़ना।

हाथ दूर निकता। ए मालिक मैं तो तेरी उंगल फड़ी मेरे को छुट जाएगी, मैनू अपने आप ते हो नहीं कि मैं मजबूत होके तेरे चरण फड़ सकना, मैं मजबूत होके तेरे नाल जुड़ सकना, मैं तेरे को चाहना कर गए लीनी पार ब्रह्म, तू मैनू अपने रहमत नाल मेरे हाथ नू फड़ ले। पर उत्पन्न है

पंजी लाइन से पढ़ो। बाएं ग्रह की लाज अस जड़ी तू मेरी बाह फड़ी है ना कहती लाज तू रख जड़ी तू मेरी बाह बल्कि इतों तक आख्या ने हे मेरे मालिक तेरिया पूजा में ज्यादा बल है इसलिए जे मैं डुब रहा तो मेरी उंगल तू फड़ ते मैनू बाहर कढ़ इन्हें आख्या मैनू उंगल फड़ा दे मैं बाहर निकला मैंने कह लगे भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर हे बड़िया पूजा वाले बड़िया बड़िया शक्तियां वाले भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत जय लिहो अंगूरिया मेरी उंगल तू फड़ ले बाणी विच केडी गहराई गुरु कहते ने अपने तो कभी मान ना करी सिख होंदिया होया भी कभी होमे ना करी कि मैं महान सिख हां काल ना काल पर रंग गुरु जी तू छड़ दे इसे में जदों आख्या ने ना जय ते उपजी ते मिली सच्ची पीस समाओ ते अगली लाइन विच कहन लगे मत किते इस मिलाप नू ए ना समझ लियो कि मैं अपनी कारना नाल मिलाप कीता बल्कि मेरे मालिक ने आप मैनू बहुत

0: पाप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया रखनहारा रखया अपनी करमया रहाओ बाह पकड़ प्रभ काढ़या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बाह पकड़ प्रभ काढ़या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गुरु की साजिदवादी गुरु श्री गुरु खालसा सत संगत जी देव गलिया के मालिक शांति के पुंज गुरबाणी के देश दीन दुनिया के नाथ श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने साढ़े तो कृपा कर दिया है।